0: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियां, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियन फ्यूनरल केयर .com।
1: Pepe's Piri Piri presents Jubin Nautiyal live in concert.

मेरा माइंड तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतने कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

इस मर्ज की दवाई चाहिए, तू रगों में समाई चाहिए, जहां जो लिखूं बस तेरा नाम लिखूं, ऐसी लिखने वाली स्याही चाहिए, खुदा है तो खुदाई चाहिए, या इस जिस्म से रिहाई चाहिए, तू है तो मैं हूं यकीनन, नहीं तो मुझे इस वजूद की तबाही चाहिए।

0: बनाया,
1: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया ऑन सनराइज विद मी शबनम साई. वी आर हैविंग सम टेक्निकल डिफिकल्टीज एज यू कैन प्रोबेबली टेल. वी आर ट्राइंग टू फिक्स इट एज स्विफ्टली एज वी कैन. नॉनदलेस द म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन योर नंबर वन स्टेशन. डोंट गो एनीवेयर. ओके.

0: आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ. सुन रहे हैं ना आप सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ. गुड. आफ्टर अ बिट ऑफ अनप्लान्ड एडवेंचर वी आर बैक इन बिजनेस. वी आर होपिंग, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड ऑफ कोर्स. नॉनदलेस द टू सॉन्ग्स बैक टू बैक दिस आवर, तेरा हुआ एंड ख्वाब देखूं, जहां भी आप सुन रहे हैं. गुड मॉर्निंग.
1: Back to back songs with Ambala Sweets, celebrating serving the community for 60 years. Check online at ambala.co.uk for your nearest store or 1 hour click and collect available. Ambala Sweets, now open in Sheffield. Ambala, 100% vegetarian.

0: This one taken from the film Kuch Khatta Ho Jaye, Guru Randhawa, Zara Is Khan, Ishaare Tere. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज ट्यूसडे द 22nd की सुबह शर्मनम साही के साथ.
1: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
2: हेलो यूके वालों, बिग बॉस इज बैक और इस बार घर वालों को मिलेगा एक नहीं टू चांस. बिग बॉस ओनली ऑन कलर्स.
3: वॉच बिग बॉस 20 टुनाइट.

0: Pepe's has launched to every store nationwide a new loyalty. Buy six times and get 25% off. T's and C's apply. But wait, they still give away great prizes every week, and you will still get 10% off if you've downloaded the Pepe's app and ordered for the very first time. Order on the Pepe's app. It's cheaper, and you get so much more when you order your favorite flame grilled chicken. Pepe's, simply Pepe-licious.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
2: The future is unpredictable at times, but the Open University are the experts in online learning, allowing you to fit study around your life. What's more, you'll have support from dedicated tutors every step of the way. Now, suddenly your possibilities are open. Search the Open University to find out more. The Open University, the future is open.
3: संगीत साधना है,
4: संगीत प्रार्थना है,
5: संगीत उपासना है,
6: आत्मा की आवाज है.
7: सिर्फ एक मंच नहीं, वो है हिंदुस्तान का संगीत स्थान.
8: India's biggest singing show is back. Air India Saregamapa, presented by South Hall Travel. Shanivar aur Ravivar, sham 7:30 baje, UK. ZTV HD. Available on Sky 707, Sky Glass 714, Virgin 809, BT 394 and Z5.